0: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून। टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4। रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coeusmanabad.ac.in वेबसाइट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।
1: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। मित्रांनो, तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आपण जाणून घेत असतो अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास, ज्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून आपलं शिक्षण पूर्ण केलेलं असतं आणि आता आयुष्यामध्ये अशा आपल्या एका यशाच्या मार्गावर असतात की त्यांचं हे मार्गक्रमणच आपल्यासाठी प्रेरणा असतं। अशाच पद्धतीनं आज आपण रेडिओ तेरणाच्या स्टुडिओमध्ये निमंत्रित केलेलं आहे मोहसिन शेख यांना। ते 2014 मेकॅनिकल या ब्रँचमधून पासआउट आहेत। सध्या मुंबई येथील घनसोलीमध्ये सेफ्टी ऑफिसर म्हणून गोदरेज अँड बॉईज या कंपनीमध्ये कार्यरत आहेत। तेव्हा मोहसिन यांची जर्नी कशी आहे ते आपण जाणून घेऊयात। मोहसिनजी, मी तुमचं स्वागत करतो रेडिओ तेरणामध्ये।
2: थँक्यू सर।
1: जसं मी आत्ता एक इंट्रोडक्शन करून दिलं आणि आपलं जसं थोडंसं अगोदर मुलाखतीच्या अगोदर पण बोलणं झालं होतं की मूळतः तुम्ही धाराशिव उस्मानाबादचेच आहात आणि साधारणतः 2014 तुम्ही पासआउट झालेला आहात।
2: हो,
1: तर आता जवळपास एक 10 वर्ष झालेली आहेत तुम्हाला पासआउट होऊन।
2: येस येस।
1: तर ह्या 10 वर्षामध्ये कधी कॉलेजवर येणं झालं होतं?
2: कॉलेजवर मोस्टली फार कमी झाला असं नाही, कारण जॉबमुळं टाइम भेटत नव्हता आणि असं कधी पण आलो आपण धाराशिवमध्ये तर आपण मॅक्झिमम ट्राय करतो की कॉलेजला एकदा यू व्हिजिट करू, कारण फारशी डेव्हलपमेंट झालेली आहे कॉलेजमध्ये। नवीन नवीन बिल्डिंग्स, स्पेशली प्लेग्राउंड आहे, त्याचं डेव्हलपमेंट झालेलं आहे आणि वेगवेगळे नवीन नवीन सर दिसतात, बाकी पूर्ण फॅसिलिटी चेंज झालेले आहेत।
1: रेडिओ तेरणा,
2: रेडिओ तेरणा आहे आणि बाकी असं म्हणलं तर भरपूर गोष्टी आहेत की जे चांगल्या प्रकारे डेव्हलपमेंट झाले, म्हणजे आम्हाला जसं वाटत होता की असं असं होऊ ते झालेलं आहे। म्हणजे आता प्रत्यक्ष आम्ही बघतो की हे गोष्टी दिसून येतात आणि हे बघून फार आनंद होतो की आपलं कॉलेज आहे।
1: आप कम्फर्टेबल हिंदी में तो हिंदी में बात सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं।
2: ये देख के बहुत अच्छा दिखता है कि अभी कॉलेज बहुत अच्छा
1: चेंज
2: हो गया है और आगे बढ़ रहा है।
1: ऐसे कैंपस में आके गए थे कि बाहर से बाहर देख के जाते थे?
2: कैंपस में ऐसा मोस्टली एक दो बार आया हूँ, लेकिन बाहर से ऐसा विजिट ज्यादा होता है।
1: अच्छा, यानी दिल की धड़कनें बढ़ती होंगी ऐसे। हाँ, सामने से ये अपने हाईवे से पुल के सामने
2: गाड़ी पे जाते तो फिर ब्रेक मारते देखते कॉलेज को। अच्छा। उसके बाद आगे ये होता है कि एक कॉलेज को देखना भी ये रहता है कि एक अठवन।
1: हाँ, पुराना
2: पुरानी यादें जो भी है आपके सामने आ जाती है कि कॉलेज ऐसा
1: कैसा था। कैसा था उस वक्त का वक्त, यानी 2014 पास आउट हो गया, 2010 में आपने शायद एडमिशन लिया था?
2: हाँ, 10 में पास एडमिशन लिया था मैंने, मैकेनिकल से मेरा ये हुआ था। और मैकेनिकल में टीचर्स बहुत ज़बरदस्त थे हमारे सिखाने के लिए। फर्स्ट ईयर हमारे को पूरा एकदम चैलेंजिंग, एकदम नया, और जैसा हम सुने थे वैसे ही था। पूरा स्ट्रिक्ट था, मतलब पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई कंपलसरी ये। और बैचेस बहुत अच्छे थे कि ऐसा सब सर जो थे एक पैशनेट थे सिखाने के वास्ते, नए बच्चे थे और हम लोग को भी उत्साह था।
1: OMS थे क्या उस वक्त? आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट थे?
2: हाँ, आउट ऑफ महाराष्ट्र के बहुत सारे थे स्टूडेंट्स। मैक्सिमम मेरे बैच में है ना, नहीं भी बोले तो 16-17 बच्चे है ना आउट ऑफ के थे। मुंबई के भी थे और है ना इधर साउथ के भी एक दो बच्चे थे, नॉर्थ के है ना 16-17 के ऊपर बच्चे थे।
1: अच्छा,
2: तो अच्छी बैच थी, मतलब मिली जुली बैच थी पूरी। लोकली थे, लोकली 20-25 बच्चे थे कि लोकल से आते थे और बाजू के गांव से, मतलब लातूर से, बीड से, उस टाइम के भी बच्चे थे। तो हमारी दो बैच हुई थी, ए और बी।
1: अच्छा।
2: हाँ, और है ना सी भी थी बाद में, लेकिन सी को ये नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर की बात है। लेकिन बाद में लेटर ऑन एज मैकेनिकल अलग हो गया,
1: अलग हो गया। अच्छा।
2: फिर उसके बाद बाकी के बैचेस अलग हो गए तो सब है ना फिर अलग अलग, फिर ये हुआ। तो बैचेस अच्छे थे और अभी भी सब लोग कॉन्टेक्ट में, ऐसा नहीं कि कॉन्टेक्ट में नहीं
1: मुझे
2: है।
1: तो आपके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि आप यादों में वहीं पे कहीं पे तो घूम रहे शायद 2010 से लेकर 14 से में।
2: नहीं, कॉलेज आए तो एक ये रहता है ना, एक कॉलेज देखे तो वो याद आ जाती है कि कॉलेज में था, ऐसे प्रैक्टिकल्स होते थे, ये होते थे, एग्जाम्स होते थे, एग्जाम के टाइम का टेंशन अलग,
1: अच्छा
2: बाकी का सब ये रहता है। एक मतलब हर इंसान को एक
1: वो यादों का
2: याद में आ जाता है, और याद नहीं रही तो फिर वो
1: पिटारा खुल गया तो बहुत सारी तो
2: बहुत सारी चीज बाहर आती है। वैसे बैच हमारी बहुत डिसेंट थी, ऐसा ये नहीं था कि कुछ ज्यादा ये था, डिसेंट बैच थी और सब पढ़ाई वाले थे बच्चे, तो मजा भी आया। और पास आउट होने के बाद तो क्या, अभी थोड़े दिन मिलते रहे लोग।
1: अच्छा अच्छा, अब अभी हर कोई अपने अपने काम में।
2: हाँ, अब क्या, अब 10 साल हो गए, कोई शादी हो गया किसी का, किसी के किसी इसमें लाइफ में लग गए।
1: अच्छा अच्छा,
2: जॉब में वो टाइम नहीं मिलता है।
1: अच्छा, तो जैसे आपने पहले कहा था कि आपकी पढ़ाई लिखाई तो पूरी यहाँ पे हो गई धाराशिव में,
2: जी धाराशिव
1: स्कूल में आपने कहा था कि 12th में शायद आप, तो आपको यही तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज में आना था या कुछ अलग सोचा हुआ था?
2: रीजन ये था कि मेरे पिताजी का है ना, मतलब है ना, कंडीशन उतनी ये नहीं थी, फैमिली कंडीशन मेरी बहुत बैकवर्ड में, मतलब बहुत कम थी, आर्थिक कंडीशन है ना जो रहती है फाइनेंशियल तो कम थी। बेसिकली मेरे पिताजी है ना टेलर है, और है ना वही रीजन था कि मुझे है ना खुद है ना खुद से आगे बढ़ना था, और इधर ही पास में रहूंगा तो बाकी खर्चे भी कम आएंगे, और लोकली अच्छा कॉलेज है, दो लोग बाहर से आते इधर पढ़ाई करने के लिए। तो पिताजी का भी कहना ये था कि सब बाहर से इधर आ रहे, तू इधर से बाहर क्यों जाता है? तो वो रीजन के लिए है ना मेरे को पिताजी ने बोले कि इधर ही प्रेफरेंस दे, और इधर है ना बहुत सारे लोग थे पिताजी के पहचान के, कि वो लोग भी है ना मुझे बोले कि अरे कॉलेज अच्छा है, पढ़ाने वाले सर अच्छे, पुराने सर है, अच्छा मेन तो क्या है, कहाँ पे भी गए तो सीखना ही है, मैकेनिकल जाएंगे तो कुछ अलग नहीं सिखाएंगे कोई, लेकिन इधर के सर पुराने हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो यही था कि गेस सबका सजेशन यही था कि इधर ही लो, और उस टाइम 12th पास अपने को क्या समझ में आता है ज़्यादा, तो जो बड़े बोले वो हिसाब से हम चले।
1: अच्छा,
2: और लिए, और डैट वन इज़ गुड, क्योंकि है ना वो डिसीजन भी अच्छा था, और आगे उसमें ग्रोथ हो गई, कुछ सीखने मिला, इसके लिए तो आज अच्छे कंपनी में कर रहे।
1: अच्छा,
2: अगर सीखने नहीं मिलता तो थोड़ी अच्छे कंपनी पे हम काम करते, ये फायदा हुआ है, ऐसा नहीं कि
1: तेरना कॉलेज का चॉइस करना सही सही रहा, खर्चा भी उतना ज्यादा नहीं हो गया, पढ़ाई
2: भी अच्छी हो गई, अच्छे टीचर्स मिले सिखाने के वास्ते, व्हाटएवर, लेकिन जो भी है ये चीज के लिए कि इधर एडमिशन का जो डिसीजन था सीखने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और खुद को डेवलपमेंट करने के लिए, ये चीज के लिए है ना बहुत बेस्ट रहा एज पर मेरा, जो भी है मेरा खुद के ऊपर, जो जैसा करेगा हर एक का अलग रहता सजेशन, बट मेरा ये जो सजेशन है कि है ना जहाँ यहाँ पे एडमिशन लेना मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ पता चली, और सिखाने वाले सर भी थे, अच्छे से सिखाते थे, तो एक फ़ायदा हुआ, ग्रोथ हो गई, खुद की मेंटली ग्रोथ हुई, फिजिकल तो होती रहती है लेकिन मेंटली भी बेस्ट रहती है, वो मेंटली है ना कोई बाद में कोई नहीं कर सकता है, तो मेंटली ग्रोथ होना ये बेस्ट था, इसके लिए चॉइस तो बहुत सही रहा इधर लेना।
1: तो जैसे आपने 4 साल यहाँ पे पढ़ाई आपकी अच्छी हो गई ऐसा आपका कहना है, तो ये कैसा रहा, मतलब जैसे कि आउट ऑफ महाराष्ट्र के भी स्टूडेंट थे, बाकी भी बहुत सारी चीजें थी, तो आपकी पढ़ाई कैसे चलती थी फिर यहाँ पे, यानी आपका करिकुलम 4 साल का?
2: पढ़ाई बैचेस थे, डिफरेंट बैचेस थे, और पढ़ाई करने का एक सिस्टम
1: था। आपने ऐसा भी कहा था कि डिसेंट बैच है, तो कैसे पढ़ाई होती थी आपकी सभी लोगों के साथ?
2: डिसेंट बैच
1: वर्ड बहुत ऐसा प्रोमिनेंटली यूज किया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ।
2: डिसेंट बैच ये था कि है ना कोई किसी केस में नहीं था, मतलब है ना जो रहता है आजकल के स्टूडेंट्स जो अदर एक्टिविटीज में ज्यादा रहते हैं, कॉलेज छोड़ के अदर एक्टिविटीज में, तो वैसा नहीं था हमारे बैच में, सब लोग है ना एक दूसरे को पकड़ के है ना पढ़ाई के लेके जाते थे, मतलब है ना बैचेस है ना सब लोग कंटिन्यू रेगुलर कॉलेज अटेम्प्ट करते थे, सब लोग है ना एक दूसरे को पढ़ाई में मदद करते थे, इसके लिए भी डिसेंट बोला हूँ मैं कि मैक्सिमम क्या सब लोग है ना लेक्चर्स अटेम्प्ट करते थे, कुछ होंगे हमने पैसा भरा है कॉलेज के लिए,
1: तो हमको ये करना,
2: हमको है ना जाना है, अटेम्प्ट करना है, भले कुछ समझ में आओ मत आओ, जाना है उधर बैठना है, ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में था।
1: ओके।
2: और एक दूसरे को हम ये चीज़ के लिए मोटिवेट करते थे कि अरे अपन कॉलेज के लिए पैसा भरा है, पिताजी ने पैसा भरा है, घर से पैसा आया है, तो ये चीज़ के लिए मुझे बहुत डिसेंट लगता है। मैं कुछ फ्रेंड्स थे और अच्छे अच्छे आप सही जगह पे ही है, क्यों बोले तो उन्होंने टाइम सही जगह पे लाला, इसके लिए आज है ना उनको फ़ायदा है, गलत टाइम यूज़ नहीं किया कि कॉलेज का टाइम वेस्ट किया, तो ये फ़ायदा हुआ है। इसके लिए डिसेंट बोला हूँ कि है ना उन्होंने हमको समझाया, मतलब हमारे साथ की जो टीम थी तो ये लोग हम एक दूसरे को मोटिवेट करते थे और अच्छी चीज़ के लिए सब लोग एक दूसरे को है ना सपोर्ट करते थे, इसके लिए डिसेंट बोला हूँ मैं।
1: अच्छा, नहीं तो आज जरूरी है।
2: हाँ वो जरूरी है, और ग्रोथ के लिए यही जरूरी रहता कि आपका टाइम से लगना
1: दिखाई नहीं देता है।
2: हाँ आज दिखाई नहीं देता, आज क्या करते कॉलेज बंक करना है ये करना है, तो लोग ज़्यादा ये करते उसको प्रेफर करते, और टाइम जाने के बाद समझ में आता कि अपन टाइम वेस्ट किया, अपन चार साल चले गए, अपने चार साल के अपने इतने सारे पैसे कॉलेज को दिए और अपने को जो आउटपुट चाहिए था वो हासिल नहीं किया, क्यों कॉलेज बंक किया तो कहाँ से हाल ये हो सकता उसका। तो ये चीज़ था कि हमारे लोग क्या थे, हम नहीं भी आ रहे तो कॉल करके बोलते थे कॉलेज ले जाए आप ले ला, तो हम लोग एक दूसरे के साथ सब कनेक्ट होते थे और बाकी की चीज़ अदर एक्टिविटी नहीं थी कुछ है ना, बाकी का चीज़ का ये सिर्फ एक था कंसेप्ट कि सबको साथ में पढ़ना है, सबको साथ में आगे बढ़ना है, ये कंसेप्ट था। इसके लिए मेरी जो बैच है 14 तक की जो बैच थी हमारे 10 14 हाँ वो अच्छी डिसेंट बैच थी, अदर एक्टिविटी

0: कंसेप्ट क्लियर था कि हम HVAC में करेंगे या फिर है ना इसमें कोर्सेज थे उधर, तो उधर जाके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थे उधर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उसमें जाके हम है ना कोर्स करेंगे ये सोचे थे। और हमने वो सब लोग ने वही किया कि हैदराबाद में गए, वहाँ पे विद्यानगर बोल के एक है इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, तो ये भारत सरकार की तरफ से है ना जो सर्टिफिकेशंस रहते हैं वो है ना देते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती है 15-20 दिन की ट्रेनिंग होती है। और ये विद्यानगर में है इंस्टीट्यूट, अच्छा इंस्टीट्यूट है, फीस ज़्यादा नहीं लगती है, कुछ नहीं लगती है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार, और पढ़ाते भी अच्छा ही है। तो उधर जाके है ना, मतलब हमारे बैच में क्या था, सब एक दूसरे को है ना किसी को कुछ पता चल गया तो एक
1: तो
0: दूसरे को
1: एक दूसरे को
0: बोलते,
1: बोल
0: एक
1: देते
0: हेल्प
1: हैं।
0: करते थे, तो ये चीज़ का फ़ायदा हुआ। अभी हम मुझे भी पता नहीं था कि करना क्या है, तो मैक्सिमम सब ब्लैंक ही रहते हैं कि अभी जो मिला वो करेंगे। तो हम लोग उधर जाके कोर्स किए, और कोर्स करने के बाद है ना मुझे एक जॉब में भी मिल गई, जॉब हो गया उसका, तो उससे ही है ना मुझे एक दूसरे जो थे मेरे सीनियर गाइडेंस करके है ना मुझे बोले कि तुम इसमें आओ, सेफ्टी में आओ, और मैं सेफ्टी में घुसा रोहन बिल्डर में। फिर उसके बाद दूसरा कंपनी है, स्विच करते रहे। अभी क्या, अभी एक कंपनी में ज़्यादा देर मतलब रुका हूँ, 2.5 साल 3 साल ऐसा रुक के है ना अभी चेंज किया हूँ। अभी चौथी कंपनी है मेरी गोदरेज एंड बॉयज़ में, गोदरेज एंड बॉयज़ के भी इंटरव्यूज अच्छे रहते, तो हुआ है उसमें।
1: अच्छा,
0: और
1: ये गोदरेज एंड बॉयज में सेफ्टी ऑफिसर है ने, ये आपका प्रोफाइल कैसा रहता है, मतलब काम का तरीका क्या है, क्या होता क्या है एक्चुअली इसमें?
0: ओरिजिनल में सेफ्टी ऑफिसर एक मुझे भी पता नहीं था, जब मैं है ना लगा हूँ मुझे भी लगा था कि भाई सेफ्टी ऑफिसर क्या रहता है। तो उसके बाद जैसे हम अंदर घुसे हमको पता चला कि भाई ये साइट पे जो लोग काम करते हैं, जो भी है ना साइट के अंदर है ना जगह है, जो प्लेस है, इन्वायरमेंट है, और है ना पीपल प्लेस इन्वायरमेंट, इनका कंसेप्ट यही है कि हम तीनों को है ना, हमें ना जो भी हज़ार से जो भी है ना खतरे वाली चीज़ है इससे इनको बचाए। कि मोस्टली क्या होता है, लोग जहाँ पे काम करते हैं तो लोग ये चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते कि केमिकल यूज़ हो रहा है या फिर है ना प्रदूषण हो रहा है, कुछ प्लास्टिक का चीज़ हो रहा है, या फिर आदमी काम कर रहा है ऊपर से गिर सकता है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। सबका जो एम रहता है कि सिर्फ प्रोडक्ट निकाले कि किसा है ना आउटपुट कैसा निकले, बट कोई ये जीवन के ऊपर, कोई आदमी के ऊपर, जा आदमी के जीवन के ऊपर, बाकी चीज़ के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, और जहाँ पे भी है ना काम चालू होता है तो उनके तरफ से है ना ये कंपलसरी रहता है कि जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जो एक्ट है अपने इंडिया के अंदर, उसके थ्रू है ना हर जो साइट के अंदर आदमी लोग काम करते हैं वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर कंपलसरी रहता है, तो लोग ये बाईपास करते हैं। तो मुझे एक अवार्ड थी अंदर से एक है ना, अच्छा मुझे ये था कि है ना हम लोगों के लिए कुछ करें, और सब में ज़्यादा लोग है ना इस पे ध्यान नहीं देते, वर्कर्स मतलब लोग समझते कि यार ये छोटा कैटेगरी, ये कैटेगरी उनके ऊपर क्यों ध्यान देना है, बट उनका भी लाइफ रहता है, उनकी भी जीवन शैली रहती है, अगर हम उनके ऊपर ध्यान देंगे तो वही लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वही लोग देखेंगे तो है ना ताजमहल भी बनाने वाले वर्कर्स ही है। तो यही चीज़ था कि है ना हम वर्कर्स और है ना जो है अदर जो सोसाइटी है उसके लिए एक अच्छा काम करें, यही सर्च के अंदर है ना मुझे ये कंसेप्ट अच्छा लगा मुझे कि तो मैं इसके अंदर घुसा हूँ। तो इनका बेसिकली काम यही रहता है कि वर्कर्स और दूसरी चीज़ है मतलब है ना इन्वायरमेंट है, उसको प्रदूषण ना हो, वर्कर्स की जान बचे, तो इसके लिए जो जो फाइटिंग करना है कंपनी से फीडबैक, मतलब है ना ऊपर में काम कर रहा है उसको बेल्ट चाहिए, बेसिक पीपीस चाहिए, शूज़ देना चाहिए उसको, कटिंग कुछ कर रहा है उसको हैंड ग्लोव्स देना है, प्रोवाइड करना है नहीं करना है, ये कंपनी से हम झगड़ते हैं कि भाई उसको है ना ये दो,
1: अच्छा।
0: क्यों, वो लोग काम कर रहा है ऊपर से गिर गया मर सकता है, ऊपर से गिर गया उसका हाथ पांव टूट सकता है, तो इसके लिए है ना स्पेशली डिवीजन रहता है, मतलब हर कंपनी में रहता है आजकल है ना, हर इंडस्ट्री में हर जगह कंपलसरी हो गया है कि भाई आपको है ना जो भी आदमी अंदर काम कर रहा है उसको है ना इंश्योरेंस देना है, उसको है ना जो भी इंश्योरेंस चाहिए, जो भी पॉलिसी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए उसको, तो ये है ना आजकल पूरा कंपलसरी हो गया है। तो ये चीज़ के लिए मैं अंदर घुसा हूँ कि देखते हैं। और इसमें मेन दूसरा भी चीज़ ये था कि मोटिव ये था कि

0: पेमेंट भी अच्छा बढ़ता है इसमें।
1: अच्छा ओके,
0: ये भी था, ऐसा नहीं है कि इसमें, और काम भी कम रहता है, ऐसा नहीं रहता कि ज़्यादा काम रहता है। तो वो सोच के ये किया, सिर्फ ये रहना चाहिए कि आपको है ना स्ट्रगल करने आना चाहिए, आपको फाइट करने के लिए आना चाहिए, कंपनी से आपको ये चीज़ मंग के लेने के लिए आना चाहिए। कंपनी देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, लेकिन आपको उसे मंगना चाहिए, आपको उसे लेने आने चाहिए। तो अगर ये लेने आना आता है आपको, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। कंपनी से निकालने आना है तो आप ले सकते हो, अगर लेने नहीं आता है तो फिर मेरा तो सजेशन, हाँ मेरा तो सजेशन है कि इसमें मत घुसो, कि ये चीज़ है ना आपके हित में नहीं है। फिर आप फिर वो एक स्टैचू बन के रह जाएंगे जो कुछ काम का नहीं रहेगा।
1: अच्छा, तो ये जो आपका जॉब है सेफ्टी ऑफिसर का, ये मैकेनिकल के बाद ही होता है क्या, कोई भी स्ट्रीम का मतलब ये जा सकता है स्टूडेंट?
0: बेसिकली देखो, इंजीनियरिंग और है ना अदर जो डिग्रीज हम कंपैरिजन करते हैं, तो ये अदर डिग्री भी अच्छे रहते हैं, ऐसे नहीं रहते कि ख़राब रहते, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। लेकिन एक इंजीनियरिंग का जो ये रहता है टेक्निकल नॉलेज जो आप बोलते हैं, क्यों हमारे इसमें बहुत सारे क्या रहते सेफ्टी में कि है ना बहुत सारे हिराची मेथड्स रहते हैं। हिराची मेथड्स के अंदर है ना एक है ना मेथड जो रहता है इंजीनियरिंग कंट्रोल रहता है। आपको इंजीनियरिंग आता होगा, आपको कुछ उसके बारे में नॉलेज होगा, तो ये आप सजेशन दे सकते हैं। बाकी का भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हिराची मेथड के अंदर क्या रहता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल में तो बोल के रहता है कि हम है ना हज़ार को कंट्रोल करने के लिए कौन सा इंजीनियरिंग तरीका यूज़ कर सकती है, कौन सा दिमाग आप लगा सकते हैं। तो ये है ना मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज रहते हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज रहते हैं, जैसे है ना अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर है ना बाकी के है ना अदर इधर के ये हो गए CBRE हो गए, या फिर दूसरे कोई ये ऑर्गेनाइजेशन हो गए बड़े, जैसा गोदरेज हो गया, गोदरेज है ना गोदरेज एंड बॉयस की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गए, मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपनी आ गए, या फिर है ना मैकेनिकल बेस्ड जो कंपनीज है, वहाँ पे आपको मैकेनिकली चाहिए, वहाँ पे आपको है ना अदर ऑप्शन नहीं देता है।
1: अच्छा।
0: उसमें क्लियर लिखे वाला रहता है बी मैकेनिकल, बी इज रिक्वायर्ड प्लस ADIS, ये ADIS है ना इसका एक सर्टिफिकेशन है जो सेफ्टी का एक सर्टिफिकेशन होता है, तो ये कंपलसरी है। ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर कुछ नहीं करते, ऑर्डर के लिए भी होता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन फिर उसको लिए वो
1: मेरा इसलिए मैंने आपको ये पूछा था कि
0: ग्रोथ के लिए है ना इंजीनियरिंग चाहिए बेसिकली। मैं ये बोलता हूँ
1: इंजीनियरिंग का भी होगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने एल्यूमिनाई के जो इंटरव्यूज किए, तो बहुत सारे मैकेनिकल होने के बाद फिर वो सॉफ्टवेयर IT इसमें वो चले गए, शायद उसका कोई कोर्स करके
0: वही
1: सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले गए। तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में नहीं था?
0: मेरे दिमाग में सिंपल ये था कि मुझे ग्राउंड पे रहना है, ये मेरे दिमाग में था। दैट वो एक रीजन हो सकता है कि पेमेंट नहीं बढ़ गया वो लेवल में जो IT में है।
1: आपके दोस्त है कोई ऐसे?
0: है, बहुत सारे लोग है कि मेरे साथ, हमारे साथ को बैच तो अभी 10 साल हो गए, तो कोई कोई बहुत सारे इसमें घुस गया है, सॉफ्टवेयर में अच्छे अच्छे इसमें है, पैकेजेस में है, 24-25-30 लाख-70 लाख तक के भी पैकेज के लोग बंदे है कि अपने कॉलेज से जो पास आउट हुए से। बट ये है कि हर चीज का ये नहीं रहता है कि लाइफ मतलब ये नहीं चाहिए कि भाई अंदर से सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, सेटिस्फाई भी होना चाहिए कि दिल अपना, कि भाई अपन जो कर रहे कि अपने मन को भी चाहिए, लाइफ भी सेटल चाहिए, लाइफ भी एकदम, ये ज़्यादा भी पैसा लेंगे चलो ले लो पैसा, बट आपके पास
1: वक्त
0: नहीं है खुद के, हाँ खुद के फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो ये सोचा नहीं था। और एक बार ग्रोथ होने के बाद लगा कि भाई अभी करेंगे उधर, बट अंदर से ये नहीं हुआ कि भाई अभी उधर जाना, ये किया हूँ इतना टाइम इधर डाला हूँ। ग्रोथ तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ग्रोथ है, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि ग्रोथ नहीं है। कोई भी चीज़ में ग्रोथ नहीं होती, ऐसा नहीं है कि हम उसको सोचते नहीं है, उसको है ना फाइंड आउट नहीं करते हैं, तो वो चक्कर में है ना हमारे बहुत सारे चीज़ रुके हैं। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, अभी ऑटोमेशंस के अंदर बहुत सारे है ना AI है, AI से कनेक्ट हो रहे हैं, मैकेनिकल इज फ्यूचर अगर हम उसको AI के साथ ये करेंगे तो, क्यों अभी रोबोटिक्स हो वही अब ज़माना है कि है ना उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। अभी AI आए है तो है ना वो भी डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये सब मैकेनिकल बेस है कि आप है ना एआई के लिए भी है ना जो रोबोट लगाएंगे तो उसको मैकेनिकल ही है वो, अगर उसको आप है ना एआई के साथ कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ये है आगे है ना आपको उसके अंदर ग्रोथ है सब ये है।
1: अच्छा,
0: हर फील्ड के लिए ग्रोथ रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई फील्ड के लिए कम रहता है।
1: ठीक है, एक आप पहले ऐसे थोड़े से कुछ गिने चुने लोगों में हो कि जो मैकेनिकल के बाद भी अच्छा करियर हो सकता है ऐसा आप कह रहे हो। तो मित्रांनो, आपण जी चर्चा करत होती मोहसिन शेख यांच्याशी, 2014 मेकॅनिकलमध्ये पास आउट आहेत, सध्या मुंबई घनसोली येथे सेफ्टी ऑफिसर म्हणून आहेत गोदरेज अँड बॉईज कंपनीमध्ये। तो आपने आप फिर से एक बार वो 2010-14 के बीच में लेके गए, आपकी डिसेंट बैच थी ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेकॅनिकल के स्टूडेंट इतने भी खामोश रहने वाले नहीं रहते।
0: खामोश
1: कोई तो
0: नहीं, नहीं
1: झगड़ा
0: फसाद हम लोग ये चीज में नहीं थे, ऐसा नहीं कि थे, कुछ थे और कुछ नहीं थे, तो हम नहीं थे समय थे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो इसके लिए कुछ हुआ नहीं है।
1: हाँ।
0: बाकी
1: इलेक्ट्रॉनिक सीएससी के
0: आईटी हमारे एक बैच में
1: डिपार्टमेंट की तरफ ज्यादा घूमना फिरना।
0: हाँ, डिपार्टमेंट
1: के डिपार्टमेंट की तरफ ज्यादा घूमना ऐसा कुछ
0: नहीं, नहीं ऐसा कुछ थे बंदे, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं थे, कुछ बंदे रहते ही है और होना भी चाहिए, वही एज है, नहीं तो अभी नहीं फिरेंगे कभी फिरेंगे। बट उतना ये नहीं था कि है ना किसी को ये करे, किसी को है ना हरासमेंट करे, किसी को ये चीज में नहीं थी। जो था वो सिर्फ जो टेम्परेरी बेस पे जो ये रहता है वही एक फ्लो था। बट है ना लोग है ना बहुत सही थे, ऐसा नहीं कि है ना किसी को समझा दिए, किसी को ये करे। अपने कॉलेज में कैसा था, वॉच बहुत सही था, टीचर्स लोग का जो ये था, सिक्योरिटी थे, टीचर्स लोग थे, ये लोगों का वॉच बहुत सही था। वो उसके लिए वो डर के है ना कोई आगे बढ़ता नहीं था,
1: नहीं था।
0: तो वो एक प्लस पॉइंट था कि कॉलेज के अंदर है ना अभी लोकल ही है, आप सर सब लोकल ही है, तो ये चीज के लिए किसी का डेयरिंग नहीं होता था कि भाई किसी को ये करे किसी को।
1: और कल्चरल एक्टिविटी
0: स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम लोग का बैच में तो हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए तक गए थे।
1: okay.
0: मैं बेसिकली फुटबॉल खेलता था उस टाइम पे, फुटबॉल से हम लोग का यूनिवर्सिटी टीम बना था। अच्छा, बहुत अच्छा टीम था, हमारे सीनियर्स भी थे और ये थे, तो बहुत मजा आया उस टाइम पे।
1: अच्छा।
0: कल्चरल एक्टिविटी में हम लोग थे ऐसा पार्टिसिपेट, यूनिवर्सिटीज जाके आए खेले। बाकी के एक्टिविटी तो होते रहे, सोलापुर में वो ये होता है अपना, उस टाइम में ना सेमिनार्स होते थे तो वो अटेम्प किए, उसमें भी हमारे बहुत सारे है ना कॉलेज के बंदे है ना जीत के आए। और बाकी के एक्टिविटी में भी है ना बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट होते थे कि ये लोगों ने है ना किया है ग्रोथ, जो ग्रोथ करना चाहता है जिसको
1: वो करेगा।
0: हाँ, वो करेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अभी मेरे भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे है कि जिसने है ना उसका जो लक्ष्य रखा था, उसका जो है ना एम रखा था, उसका जो ड्रीम रखा था, उसके मार्ग पे वो रहा और उसके लिए उसने अभी से प्रिपरेशन की। मतलब जब इंजीनियरिंग में था, वो फर्स्ट ईयर में था ना, तब से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर था, उसने वो ध्येय पकड़ के चलता रहा और आज वो खुद का कंपनी खड़ा किया उसने। आज है ना खुद का है ना कंपनी से है ना अच्छा लगा। ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमको एक प्राउड फील होता है, भाई ये हमारे बैच से बंदे है और ये लोगों ने हम काम किया है, ऐसे लोग भी है।
1: अच्छा।
0: तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए मार्ग है।
1: अच्छा, और जैसे कि आपने कहा था स्टार्टिंग में कि आपके पिताजी जो थे, आपके घर के हालात थोड़े थोड़े सोसो थे, टेलरिंग का काम करते थे, तो जब आपका ये सब जॉब लग गया, सब कुछ हो गया, चलो बेटा तो कम से कम टेलरिंग में नहीं आ गया, सेफ्टी में गया, क्या क्या फीलिंग क्या होती है?
0: इस समय बेस्ट फीलिंग ये रहते है कि आप है ना जो पिताजी से पैसे ले रहे उसके जगह आप है ना घर पे पैसे दे रहे।
1: हाँ।
0: ये समय बेस्ट फीलिंग रहती है, ये हर जो भी काम करने पे जाता है, जो भी काम करता है उसके लिए है ना ये सब में प्राउड फीलिंग रहता है, प्राउड मोमेंट रहता है कि हम अपने पिताजी को है ना, मतलब पिताजी को देते नहीं है हम लोग, ये हम अलग लगता है। मतलब है ना एक उनका हम है ना कुछ फीडबैक कुछ दे रहे, कुछ छोटा मोटा है ना हम ये कर रहे, हम उसको कभी फेड़ नहीं सकते।
1: बराबर है।
0: ये मेरे दिमाग में पहले से ही कि भाई हम पिताजी का जो कष्ट किए से जो मेहनत किए है हम उसको कभी रिटर्न नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हम है ना कुछ कर रहे, कि जिसके वजह से पिताजी को प्राउडफुल हो रहा है कि मेरा बेटा है ना कुछ कर रहा है,
1: कुछ कर रहा है। हाँ।
0: तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि है ना पिताजी भी आज देखते तो बहुत खुश होते सब, मतलब एक है फीलिंग आती है कि भाई हम जो कर रहे उसका तात्पर्य यही रहता है कि हम है ना फैमिली के लिए कुछ करें, नहीं तो कोई है ना घर छोड़ना नहीं चाहता है, जो करते सब है ना ये इसी के लिए करते हैं कि हम है ना कुछ गर्व फील कराए अपने पेरेंट्स के लिए।
1: अच्छा।
0: तो बहुत अच्छा मोमेंट था कि हम है ना कुछ कर पाए और पिताजी को भी गर्व है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है।
1: अच्छा, और अब आगे क्या है इन फ्यूचर, जैसे कि अभी तो 10 साल हो चुके हैं आपके ये जॉब को भी सभी चीजों को, तो अब आने वाले 10 साल के बाद 20 साल के बाद ऐसा कुछ सोचा हुआ है कि ऐसा कुछ करना है अलग?
0: अलग से ऐसा मैंने सोचा हूँ कि है ना भाई जो मेरी फील्ड है उसमें अपन टॉप मोस्ट जाए, इसमें है ना हमने ये सोचा है कि भाई अभी जो मैनेजर है मेरे एग्जाम्स ऑलरेडी हो गए, इंटरव्यूज हो गए कंपनी की तरफ से कि है ना वो लोग है ना मुझे जोनल ये बना रहे, तो वो हिसाब से मेरे प्रिपरेशंस चालू है। ग्रोथ के लिए मैंने है ना यमी के लिए अप्लाई किया हूँ, यमी सस्टेनेबिलिटी बोल के एक है और है ना एनवायरनमेंट है, ये चीज़ के अंदर है ना मुझे आगे ये करना है। अभी मेरा जो फील्ड है उसके अंदर यही है कि भाई आपको है ना इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक है और एनवायरनमेंट है, और जो फिलवक्त यही है ना फोकस में है, यही चीज़ है कि भाई इसको पकड़ो इसमें ग्रोथ करो। जितना हम सीखना चाहें ना उतना कम है, हमको सिर्फ है ना टाइम देना है और ग्रोथ करना है। आगे बढ़ना है तो भाई एक्सपीरियंस सिर्फ लेके कुछ फ़ायदा नहीं है।
1: अच्छा, तो जैसे कि आपके लाइफ में कुछ तो अप एंड डाउन्स आए होंगे, कभी ऊपर कभी नीचे रहा होगा, तो ऐसे कौन सी चीज़ थी या कौन से ऐसे गाने थे, कभी फिल्में देखने का गाने सुनने का तो हर एक को शौक रहता है, लेकिन आपको ऐसे कौन से गाने थे या कुछ थे कि जो आपको मोटिवेट करते रहे, या क्या ऐसी चीज़ है कि जो आपको मोटिवेट करती रही?
0: मेन गाने मतलब है ना ऐसा नहीं था कि हमारे टाइम पे ये ना इंजीनियरिंग के टाइम पे है ना 3 इडियट्स मूवी आई थी।
1: अच्छा।
0: तो 3 इडियट्स बहुत आइकॉनिक था, दिमाग में बैठा था कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, एंड ये उसके गाने हम है ना मैक्सिमम अपने दिमाग में थे।
1: आज भी वही चैंटिंग हो रहे हैं गाने कैंपस में आने के बाद?
0: कैंपस में आने के बाद होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट मेरी रैली कच्ची नहीं है कि मैं है ना कुछ गा सकता हूँ।
1: नहीं लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा गाना है जो कि दिमाग में चला, हम क्या करते हैं इंटरव्यू के बाद वो गाना प्ले कर देते, ऐसा कौन सा गाना है
0: जो 3 इडियट्स में जो जिसने सुसाइड किया था, क्या नाम
1: है उसका?
0: तो वही है ना, वही गाना है, वही है ना मेरे को मोटिवेट करता है। मतलब है ना खुद को ये है कि उसमें ये है कि उदास होके बैठा है आदमी और है ना खुद को है ना आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, उसको चांस चाहिए, तो ये यही है ना एक मोटिवेट करता है मेरे को गाना कि अपने को चांस चाहिए आगे बढ़ने के लिए।
1: और ऐसे लाइफ के क्या गोल्डन वर्ड्स है कि जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए समझो इंस्पिरेशन देते रहे, एक दो तीन गोल्डन वर्ड्स रहते किसी भी कि नहीं यस मुझे आगे जाना है?
0: गोल्डन वर्ड्स के ये है कि भाई मेरे को पिताजी हमेशा बोलते थे भाई जो भी आगे बैठा है आपके ऊपर भी जो भी है, आपके ऊपर कोई भी हो, मतलब है ना आपका बॉस हो, आपका कंपनी का मैनेजर हो या कोई भी हो, वो सब इंसान ही है, कोई ऊपर से कोई देवता नहीं है जो ऊपर बैठा है, वो अगर कर सकता है तो उसको हाथ पांव है, उसको भी वही है, उसको भी दिमाग उतना ही है, उतना ही ग्राम उसका दिमाग है, उसको भी हाथ उतना ही है, हाथ पांव उतना ही है, उसको अलग से एक हाथ एक्स्ट्रा नहीं है, वो अगर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ये चीज़ मेरे है ना दिमाग में पहले से ही था कि भाई वो कर सकता है ना, मतलब कोई ना कोई अपन कर सकते, सिर्फ ये है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, जब आपको वो रास्ता मिलेगा ना आप उसे भी ऊपर जाएंगे। तो ये चीज़ मेरे को हमेशा मोटिवेट करता था, अगर मैं किसी को देखता था अरे ये कर सकता है तो चलो भाई अपन भी कर सकते, और कोई चीज़ है ना नामुमकिन नहीं होती है लाइफ में। ये देखा हूँ कि भाई अभी अब तो सब डिजिटल वर्ल्ड है, आप सब हर चीज़ पॉसिबल है लाइफ में, कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ आपको है ना वो चीज़ के लिए ये चाहिए, गट्स चाहिए, करने के लिए गट्स चाहिए समय पहले,
1: इच्छा
0: शक्ति चाहिए, जिद्द चाहिए, और बाकी का है ना जो है वो स्टेप उठाने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि आप जो स्टेप उठाएंगे उसके बाद ही आपको है ना उसका है ना जो ये है उसका पॉजिटिव है जिसका निगेटिव है वो सब है ना आपके सामने आएगा। जब तक आप स्टेप्स नहीं उठाएंगे, खुद को है ना एक पाव उठाएंगा नहीं, तब तक आपको आगे बढ़ने के लिए ये नहीं होगा। तो यही सोचता था और इसके यही चीज़ से है ना आगे बढ़े कि भाई वो रह सकता है। और पिताजी बोलते थे कि कभी भी है ना मेहनत देखना है तो है ना अपने से जो कम कमा रहा है ना, जो गरीबी में रह के कमा रहा है जो, उसको देखो क्योंकि उसकी मेहनत ज़्यादा रहेंगी, हमेशा आपसे ज़्यादा रहेंगी, या फिर उसको देखेंगा तो और मेहनत करेगा। तो वो चीज़ मेरे को मोटिवेट करती थी। अभी मैं हम लोग की भी जॉब्स की जो स्टार्टिंग रही वो भी ऐसी स्ट्रगल में रही, तो हमको पता है कि भाई जो गरीब लोग रहते थे जिसको खाने भी नहीं रहता था, हम चलो हम लोग खा रहे, तो वो लोग एक वड़ा पाव, एक है ना एक टाइम का खाना, उसके ऊपर है ना पूरा दिन निकाल रहे और मेहनत कर रहे, हम लोग को सब मिल रहा है, हम लोग मेहनत नहीं कर रहे। तो ये लोग को देख के मोटिवेट होता था कि भाई ये लोग कर सकते, ये लोग कर रहे तो हम लोग को भी करना चाहिए, कहीं से स्टार्ट होंगे, ये चीज़ है।
1: यस,
0: और वही चीज़ मोटिवेट की।
1: यस, तो मोहसिन शेख जी, आपके पिताजी का नाम वो मैंने सज्जियुद्दीन जी। तो वैसे तो हमारे रेडियो के ज़्यादा सुनने वाले तो लोग तो टेलर ही ज़्यादा शायद वो भी रेडियो सुनते होंगे, तो ये आपका इंटरव्यू भी वो सुनेंगे, और बहुत खुशी हो गई कि आपने आके आपकी जितनी भी जर्नी है, क्योंकि आप पहले मतलब इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे कि यार मैं इतना बात कर सुना, आप देखिए आप लगभग 35 मिनट बात कर रहे हो। तो आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की और आपकी जर्नी भी अच्छी रही है, और आप आगे भी बहुत बढ़ना चाहते हो आपके ही फील्ड में, कहीं इधर उधर नहीं घूमना चाहते हो, तो मैं उसके लिए भी मैं रेडियो तैना की ओर से आपको बहुत सारे विशेष देता हूँ।
0: थैंक यू।
1: और आप यहाँ पे आए, फिर से एक बार ऐसे ही आइए, आपकी अचीवमेंट और एक बार होने के बाद हम राह देखेंगे।
0: थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर विश।
1: आणि आपण ऐकत रहा रेडिओ तेना 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। श्रोतेव, रेडिओ तेना ट्यून करा 90.4 FM वर, किंवा आपण अँड्रॉइड फोन किंवा ॲपल फोन वापरत असाल तर गुगल प्ले स्टोअरवर किंवा ॲप स्टोअरवर रेडिओ तेना हे ॲप उपलब्ध आहे। आपण रेडिओ गार्डनवरही रेडिओ तेना ऐकू शकता, त्यासाठी पृथ्वीच्या ग्लोबवरील उस्मानाला जर टच केलं तर आपल्याला ऐकायला येईल केवळ रेडिओ तेना। आपण http://radio.coeusmanabad.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊन ऐकू शकता रेडिओ तेना। आपण आमच्या फेसबुक पेज आणि इंस्टाला लाईक करा, फॉलो करा, तसेच आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर कळवा, त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9970500 9970500000। ऐकत राहा, आनंदी राहा, रेडिओ तेना 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है।

0: साथ तेरा मांगा, सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली, जूली जॉनी का दिल तुम पे आया, जूली तेरे लिए।

0: तो कौन मांगता?
1: जानी जानी चले का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है।

0: हमको मरने नहीं मांगता, हमको लेने नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली।
1: बची है पूरे 8 आने। धुन सुनाओ ना।
0: अरे नहीं

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ 100 लिए हैं.

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

0: आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज आणि मी आरजे प्रगती आहेच आपल्या सोबत बिग स्टार शो मध्ये. जे श्रोते लाईव्ह हा कार्यक्रम ऐकतायत 9970509 या क्रमांकावरती मला सांगायचं आहे लाईव्ह ऐकताय तुम्ही आणि आजचा आपला बिग स्टार शो तुम्हाला कसा वाटतोय ते. मंडळी, आज आपण बिग स्टार शो मधून जाणून घेतोय धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित यांचा फिल्म प्रवास. श्रोते हो, कोणताही कलाकार असो त्याच्या जीवनामध्ये असा एक प्रसंग येतो किंवा संधी मिळते जी त्यांचा एकूण प्रवासाचं सोनं करते. अशी संधी माधुरींनाही मिळाली, ती हम आपके है कौन या चित्रपटाच्या माध्यमातून. हा चित्रपट 1994 साली प्रदर्शित झाला आणि शोले नंतर तो भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला. या चित्रपटात त्यांनी निशा नावाची केलेली भूमिका अजरामर ठरली, तसेच त्यांच्या सोबत सलमानही दिसून आले. या चित्रपटाने 1994 मध्ये 65 कोटींचा मेगा बिझनेस केला, तसेच परदेशातही 15 कोटीचा गल्ला जमवला. त्यामुळं माधुरी दीक्षित या काळात मेगा स्टार म्हणून पुढे आल्या.
1: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम. जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो. ये जो तुम्हारा रूप है, ये जिंदगी की धूप है, चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन, ये शोखियां, ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीले मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है, क्या हाल है, ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां है ख्वाब की, कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम्ही इबादत हो मेरी, तुम्ही तो चाहत हो मेरी, तुम्ही मेरा अरमान हो, तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम्ही तो वो तस्वीर हो, तुम्ही मेरी तकदीर हो, तुम्ही सितारा हो मेरा, तुम्ही नजारा हो मेरा, यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर चिन्ह में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम, मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मानता बस तुमको हूं, तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो.

ने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी।

0: बाप रे,
1: इस तरह जल्दबाजी करोगी ना तो तुम्हारी एक न एक हड्डी जरूर टूट जाएगी।
0: टूटती है तो टूटने दो, तुम डॉक्टर किस काम के हो? वो बांधो ना वो सफेद सफेद, वो क्या होता है?
1: सफेद सफेद? अच्छा अच्छा, प्लास्टर।
0: ब्लास्टर? हाँ हाँ,
1: ब्लास्टर नहीं, प्लास्टर।
0: प्लास्टर?
1: पी नहीं, प्ला। खैर छोड़ो, जाने दो। देखो, अगर तुम्हें सचमुच स्केटिंग सीखनी है ना तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, पूरा वजन आगे के पहियों पे रखना चाहिए, यूं समझे? तुम क्या करती हो, पीछे के पहियों पर वजन रखती हो और इसलिए तो
0: डॉक्टर साहब, अगर आपको सचमुच स्केटिंग सीखना है तो एक बात जरूर याद रखिए, अपना वजन पिछले पहियों पर नहीं अगले पहियों पर रखना चाहिए। ऐसे।
2: अरे अरे,

0: मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है।

0: तो कौन मांगता?
1: जॉनी जॉनी जॉनी का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान।

0: साथ तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: थैंक यू बेबी थैंक यू।
1: हमको टोनी नहीं मांगता, हमको पिज़्ज़ा नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता।
0: ये तो कौन मांगता?
1: जॉनी जॉनी, चूल्हे का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हनी, तू ही तो मेरी जान है जान है जान।

0: हमको मेरे नहीं मांगता, हमको लेले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।